कर नफ्स दुश्मन है दुश्मन को नाशाद कर। दिल को नूरे खुदा से तो आबाद कर, दिल को

रंग लाएंगी कब मेरी आहें, फिर मदीने की जानिब को जाए। सारे आलम में फिर फिर के या रब तेरा दर्द मोहब्बत सुनाए। या अल्लाह मेक यूज ऑफ अस इफ वी गो ट्रेवल इन द वर्ल्ड एंड वी लाइट अप द हार्ट्स ऑफ द पीपल विद योर मोहब्बत एंड योर लव एंड द लव ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

रंग लाएंगी कब मेरी आहें, फिर मदीने की जानिब को जाए। मेक द पीपल गेट मैडली इन लव विद अल्लाह तबारक व तआला। दे हैव गिवन देयर हार्ट्स टू एवरीथिंग ऑफ दिस दुनिया। अगेन आई रिपीट, इट इज नॉट द एक्विजिशन ऑफ द दुनिया एंड द यूसेज ऑफ द दुनिया, बट गिविंग हार्ट्स, वी हैव गिवन हार्ट्स टू एवरी

0: भागी आ जाए, मस्तूरात घर के पीछे होगी। जाकिरा हमेशा किसी की वफा दे।
1: सलाम
0: अलैकुम। खैरियत आपकी हो तक कि आप तवाफ कीजिए।
1: तवाफ किया मैंने पहले, 11 से पहले आया।
0: The men move little forward now, let the ladies come onto the carpet little bit. A little bit, move little more forward. Right, okay, sit, sit. Meri nazaron mein tum ho bade muhtaram, ya jibal al-haram, ya jibal al-haram. Ya jibal al-haram, ya jibal al-haram, ya jibal al-haram, ya jibal al-haram.

करम से उनके मेरे सामने उनका हरम आया, करम से उनके मेरे सामने उनका हरम आया। हमारी जिंदगी का वक्त वक्ते

अल्लाह करम से रब्बे काबा के दुआया रद नहीं होती, करम से रब्बे काबा के दुआया रद नहीं होती। नजर के सामने किस्मत से मेरी मुल्तजम आया अल्लाह।

तेरे दर पर मेरा सर हो या रब, तेरे दर पर मेरा सर हो या रब, जान इस तरह तुझ पर लुटाए, तेरे दर पर मेरा सर हो या रब, जान इस तरह तुझ पर लुटाए, मुझको अपना बना लो करम से, मुल्तजम पर ये मांगे दुआए, मुझको अपना बना लो करम से, मुल्तजम पर ये मांगे दुआए, मुझको अपना बना लो करम से, मुल्तजम पर ये मांगे दुआए, तेरे दर पर मेरा सर हो या रब, जान इस तरह तुझ पर लुटाए, मुझको अपना बना लो करम से, मुल्तजम पर ये मांगे दुआए, अल्लाह।

यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फकत तुझसे हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं, हर दम जिक्रो फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का, तेरा मगर होशियार रहूं, अब तो रहे बस ताद

मुझसा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की बुराई। शुगल मेरा बस अब तो इलाही, शाम सहर हो अल्लाह अल्लाह। लेटे बैठे चलते फिरते आठ पैर हो अल्लाह अल्लाह।